मुना को आव्या काम में बावा ने राती हो वो आया के यहाँ पर सिमकु में लम उठने ये इन्हीं लम बंटा अन्ना मगवाने जाओ इगोर अपेली सोचा का मिनट मिलो को मेलर मिनट मोहा 2:21 पाका 2:30 मसी पुआ हम रादियो मो ओला ती बंदा हिसो जे मोमेंट Anon te pihai kodi ala hoy. Wera gato sai. Onko wi pakawara shit.

0: ठीक ठीक कलंक रोमोली वे बोन दिया
1: बोन दिया
0: ओशेली वा
1: कुशील लगा ओशेली वा
0: वखान वखान से ना
1: अनफरे तोरा वो लोंचन चन नम ही गाती
0: मलोबा ना मोखाला
1: ऐसे को खाला कहे कि नो आई मलोबा ना
0: आ वखा वखान मलो को जा लिया ना कहा है मैं बच्चे लोग मुंकला वे हाय मुंह तो लोंचो
1: हाँ बस कैसे लिया कि मैंने नहीं हम रोए बाहर रहा से सबाओ
0: आयो ऐसा बाबू हाँ आज मरो
1: निंते बाजे बासे और बाहे
0: माँ ही मेरा ना माँ की बिठरिया
1: हाँ मशीन ना रंगावी थे नरों के पाये नहा ऐसे के
0: आयो उन तो जो न्यू लोहे तेरी ओवा नहीं वो
1: आये खाले रूमाये तुम ना तुम अब है निगुसे ना नो
0: आयो अरे मैंने खोरू ड्रू
1: आयो
0: सलामू
1: सलाम कनाप चरा मार का नुए मिये उरी को माना का अल्फ्रेड तो राहुलो माना का
0: हल्ले मोहा
1: आयो को ने माना का ने
0: ब्रह्म लीला मनी यू
1: ने ने अल्फ्रेड तो और दिन से अल्फ्रेड तो मरा माँ के माने
0: मलोपान मौवी का नहीं हम फिर मावो
1: कोई शुक्र है ना
0: आसान